mole barbar story. Barx Zoran. Hari. अपने नितनेम अनुसार उठ के अपने मुर्शद नु इशनान कराने वास्ते पानी गर्म करना चाहुंदा है पर अग बुझ गई बारिश करके जोर दी बारिश होण करके अग बुझ गई पानी क्यों गर्म कीता जाए जे अज पीर नु इशनान ना कराया तां 12 सालां दी कीती होई खूह च पै जाएगी अज आखिरला दिन सी हरीद दी बंदगी संपूर्ण हो 12वें साल दा आखिरला दिन हरीद नु रब दे मिलन वास्ते कितनी कालना कालनी पई जंगलां दे पत्ते तू के खा

अजय भी साईं की प्राप्ति निराश होके फरीद एक दरख्त दे हेठां बैठा है। दरख्त दे उत्ते चिड़िया बोलिया। फरीद निराशता विच सी, मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया, चिड़ियो क्यों रौला पांदिया। पर चिड़िया फिर बोल दी, जंगल च रहन वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नू गुस्सा आया, चिड़ियो रौला पांदिया हो, तुसी मर क्यों नहीं जांदी। कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां धरती ते आके तड़फण लगी। फरीद ने तकिया, हो मन तू केडी भुल कीती, ए भी पंछी ते तू भी पंछी। आखो श्री वाहिगुरु, आऊं बलिहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। तू केडी गलती की, नाम जपण वाले दे मन च बड़ी कोमलता हुंदी, बड़ा दर्द हुंदा है। दुखीए नूं वेख के दुखी हो जांदा है, सुखीए नूं वेख के निरंकार दा शुकराना करदा है। ए सिमरन वाले दी अवस्था है, बंदगी करन वाले दी अवस्था है। फरीद दे दिल च रहम आया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां उड़ गईआं। अच्छा, मेरे अंदर तां शक्ति आ गई, मार भी दिता ते जवाल भी दिता। हों मैं आई फरीद तुर पिया, गर्मी दी मौसम, सामने पिंड है, पिंड दे बार बार खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी। नेड़े आया, इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा, बेटा मैनू पानी पिला। पर इस बीबी ने फरीद वल तकिया, पानी दा डोल कढ़िया, बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा, बचड़ा मेनू पानी पिला, मेनू डाढ़ी प्यास लगी, मेरे लब सुख दे जांदे। दूजा डोल कढ़िया, भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया, कितनी गुस्ताख लड़की, इनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां, मैनू प्यास लगी, मैनू पानी नहीं देंदी, डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा, पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जिसले फरीद ने बचन कीता, तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा, ओ फरीदा, कोई ये जंगल दिया निखसमियां चिड़िया ना समझी, जिन्हां नू मार के जवाल लिया, मैं खसम वाली हां। आखो श्री वाली, फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई, ए प्यास लग गई, सोचदा इहदा इह तां मेरा नाम भी जानदी। ते जंगल विच चिड़िया मारियां ते जवालियां, जिथे इंसान तां की, इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं, इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा, बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता, अला दस तैनू किवें पता लगा। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी, ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह? कहन लगी, मेरी शादी हुई बाबल दा देश छड़ के, मैं अपने साईं दे देश चली गई। रात दा समा सी, अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई, पानी। मैं तकिया, मेरे पति ने पानी मंगया। सोचिया एक पासे लोक लज्जा है, पहला दिन है, लोकी की कहणगे, दूजे पासे पति दा सच्चा ते सुच्चा प्यार। लोक लज्जा नू फरीद मैं ला के एक पासे चा रखिया। उठी, ठंडे कड़े दे विच्चों ठंडे जल दा छन्ना भर के मैं पति दे पलंग कोल पहुंची। पर निरंकार दी नेत, रात दा समा सी,
मिठी मिठी पौन चल रही सी, मेरे पति नु फिर नींदर आ गई। सोचिया जी मैं भी जाके सौ जावा, पति प्यासा सुता पिया, ए भी ठीक न, ते जे जगाउंदियां तां बेआरामी। तो इस ख्याल विच फरीद पति दे चरणा वल खड़ो गई, लैके जल दा छन्ना। इस उड़ीक विच जिस वेले पति जागेगा पानी पी लवेगा। कोई समय दे बाद अचानक ही पति दे नेत्र खोले, मेरे वल तकिया, उस तकनी विच बड़ी बख्शी सी, मेर सी। पुछे भागवान तू इथे क्यों खड़ोती है, सारी विपता दस, पानी पी। फरीद, फरीद मेरा पति उठे, मेरे हथां तू लैके पानी दा छन्ना अपने मुंह नाल जिसे लाया, फरीद मैं सच दसदी हां, पति दी बख्शिश द्वारा ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यो त्यो मेरे अंदर रब आंदा सी। आ कुछ रब पति दी प्रसन्नता, भागवान तेरे उत्ते मालिक दियां मेहरां, तेरे उत्ते साईं दी बख्शिश, पति दी प्रसन्नता दे नाल फरीद मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी। आ कुछ बाबा जी बचन करदे सन वड्डे बाबा जी, स्त्री पति अगे तीन बब्बे पढ़ लवे, बब्बा पला जी, बब्बा भुल गई, बब्बा पाणा। पुत्र माता पिता अगे पढ़ लवे, सिख गुरु अगे पढ़ लवे, घर ही रब मिल जाएगा, खुशी बाहर जान दी लोड़ ही, घर ही रब। स्त्री नु तां गुरमत विच बड़ी कंसेशन दिती है, बड़ी रियायत दिती है मेरे धन गुरु नानक। जिस रब नु लोकी जंगलां च लभदे फिरदे, धूणियां तपदे, पुठा पुठे लटकते हैं, किसी ने मोहन धारे है, किसी ने सिर दे जसवा पा ली है, रब दी प्राप्ति वास्ते। पर मेरे धन गुरु नानक सके पातशाह फरमाउंदे हैं, स्त्री अपने पति नूं परमेश्वर समझ लवे, घर ही चिरा मिल जांदा। मिल गया, कईआं नूं मिलिआ, बड़ियां साखियां गुरु इतिहास दे अंदर। माई रजनी ने पिंगले नूं परमेश्वर समझ लिआ, माई रजनी ने पिंगले नूं कौड़ी नूं परमेश्वर समझिआ। पर प्यारी सात संगत मेरे पंजे पाई दा ते मैनू पानी नहीं दिता, पानी डोली क्यों जांदी है। माई रंगरती ने कहा, फरीद कुछ मीलां उत्ते मेरी भैण दा घर है, उन्हूं अग लग गई, उत्थे कोई पानी दा प्रबंध नहीं, इथों पानी पहुंचा रही। आखोसरी वाली होर हैरान। फरीद ने कहा, मैनू सोझी नहीं पई, मैं इतने साल बंदगी कीती। माई रंगरती दे चरणां ते ढह पिया फरीद, बेटी उमरां वालों तू भावे छोटी है पर गुणा वालों तू मेरे नाल वड्डी, मैनू समत दे, मैनू साई किस तरह मिलेगा, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, कवन गुण प्राण पत।

खोजत खोजत भई बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर, आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई, कोई गुरु तारण कर। बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने 21 वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी। गुरु मिल गया भाई सबो कुछ, असि गुरु वाले तां बनते हां जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही है। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगुरे का भी कोई चीज नहीं। लावार कुत्तियां दे पैरां मार मुकाया जांदा है, उन्हां दा जीवन किसे काम दा। गुरु दी वड्डी शक्ति, गुरु दा वड्डा आसरा है, गुरु दा बड़ा मान है। बुल्ले शाह ने लिखिया, ना मैं जप तप पूजा कीती, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजां पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुल्ले शाह मैनूं मुर्शद मिलिया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन ते मेर करते हुए भाई मेरा स्थान। माई रंगी ने किया फरीद, कोई गुरु तारण कर, चला जा आज मेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहेगुरु। फिर फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इशनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा किरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए, इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा, अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया जी बारिश हो रही, जिथो अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, कितों लियावा अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वरी अजमेर गया है, सके मुसलमाना दा दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उच्ची चढ़ के पहाड़ी ते अग दी पाल की थी। दूर वेखे अग दा लिशारा पिया, तुरन लगा ख्याल आया, मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया।

जो प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता, जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकता है, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकता। ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लेंदे तो लेके चढ़दे तो लेके लेंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा प्यार।

छिया पात छिया ये सतगुरु नजर करे आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड ही हु इज डेस्टिंड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस माइंड यू ओ माई माइंड द वन एंड वन अलोन Without him, all else is waste, illusion, maya, and false love. One enjoys myriads of joys, one is a king if the Lord's grace be upon him.

बादशाह आप कृपा कीती है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ले जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

0: सी
1: खाल से मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा बरनत सुद। शेष रसन सारस

द्वीप से वह करके अर सात समुद्र की मन कहो काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बन हो सारसुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपा

सह जैसे सपना विनसित लगन बारू पीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उर्जो कहा गवा अजू समझ लच बिगड़िया ना अजू सम

कर्मी सहज न उपजे सहज सहसा न जाए कर्मी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्मी कमाल सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो आसो रहो चितला कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई

राक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा, पोपन भ्रष्ट गगन ते पही, सभन आन बधाई दई, धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्ट।

0: भयो हमरो नामन के जिबी रही शरत चरणन में।
1: मैं अपना सुत तोहे निवाजा,
2: अपना सुत तोहे निवाजा,
1: अंक पर जुड़ कर मैं पाता जा, जहां कहां तुम धर्म चला दे, कब तू करते लोक उठाए, भारी करी तपस्या।

ब्रह्मा न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर

0: अनेक रूप होए प्रगटिया।
1: वाह अनेक रूप होए प्रगटिया।
0: केड़े केड़े रूपां च आए आप?

आयो दापर कृष्ण मुरार कंस किर थारथ कियो उबर सन को राज अपै भगत जन जियो कल युग पर

सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया।

सिख लोक सुनावे कंत न पुछे वातुड़ी सुहाग दणावे चूहा खड ना मावई लग छज वलावे मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे सरसन ने आगास नू फिर मथे आवे तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे तुही

रतन मणि गल बंद रह क्यों कीन न जाने। रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। करछी साओ न समले भोजन रस खाने। डड्डू चिक्कड़ वास है कमले न सियाने। नाप कथूरी मिर्गदे फिरदा हैराने। गुजर गोरस वेच के खलसूड़ी आने। बेमुख

मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई।

ते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने ना विच समावे।

कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखिए। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्यालिए व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध प्यालिए विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। अपन

कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे काउ कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे हाथी नीर न वालिए सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

लसन लुकाया ना लुकै बैखाजे कूणे, लसन लुकाया ना लुकै बैखाजे कूणे, काला कंबल उजला क्यों होए साबूणे, डैमू खखर जो छुहै दिसे मुह सोने, कित्ते कम न आवई

देख के कर दे परवासा। थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा, सोने राज कमाईए कर भोग बिलासा। छाया बिरख न रहे थिर पुजे क्यों आसा,

जोगी संत्या वंजे तेल के नाम करता सुख मूट नानन काया गागर सत्या मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगा सा सगुणा सब करे संसार।